AI कूल नहीं डॉक्टर कूल जानने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਲ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰਿਪੇਅਰਸ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਰੀਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਟਾਇਰ ਫੋਰਸ ਯੂਨਿਟ 1 19-25 ਸੁਮਾਟਨ ਰੋਡ ਕੈਂਪਲਫੀਲਡ ਕਾਲ 0390-8-6655 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ tireforce.com.au
3: ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
4: ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ
3: ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਬਾਈਬੈਕ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੇ ਆਓ ਦਿੱਲੀ ਜੁਐਲਰਸ ਸਟਾਕਲੈਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁੱਕ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ 22 ਕੈਰੇਟ ਗੋਲਡ ਕਲਾਸੀ ਸਿਲਵਰ ਡੈਜ਼ਲਿੰਗ ਡਾਇਮੰਡਸ ਅਤੇ ਜੈਮਸਟੋਨਸ ਕਸਟਮ ਜੁਐਲਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਰੈਡੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨਾ ਬਾਈਬੈਕ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੁਰੰਤ ਕੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਸੇਫ ਰਿਪੇਅਰ ਬੁਲੀਅਨ ਬਾਇੰਗ ਸੈਲਿੰਗ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜੁਐਲਰਸ 310/2 ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੁੱਕ ਕਾਲ 0493-536-042
5: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है ता टेंशन क्यों टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील लो क्रेडिट स्कोर वेलकम कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लैंडिंग मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नु उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच
3: किचन दा स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन तुहाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton.
6: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
7: जुगाड़ नहीं ये है 8 साला तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई इना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजा PR US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
6: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
7: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
5: व्याह खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास तुन्ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनिना अते 347 डॉनस्टेल स्ट्रीट डैंडीनोंग ज्वेलर्स परोसे दी निशानी

0: कि यू नो ये तुम्हें चार थप्पड़ मारेगा और तुम्हें ना छुरा तुम्हारे में खोपेगा, और फिर ना अपने मत्थे पे हाथ रखे उन्हें, मतलब इंटरव्यू चे मत्थे पे हाथ रखे, मतलब दस दो है भी आदमी, मतलब ही सो मच फुल ऑफ लाइफ, वो उदो भी इरिटेट हो रहा है, आई कैन इमेजिन उदो की हाल है ना, कहते मुझे कह रहे हैं कि एक तो मैं ऊपर से कहते कह रहे कि तू आर्मी वाला और वो तुझे छुरा मार देगा। कहते मैंने ना पैंट पहनी हुई थी और मैंने ना अपनी मुट्ठियां बंद कर ली पैंट में कि यार बुजुर्ग बंदा है ना कुछ कहना है, मेरे फादर ने भी काम किया। कहते मैं इन्नी बुरे तरीके ना अपना हाथ कड्या, कहते मेरी पैंट ही फट गई पूरी, कहता उस दिन पैकअप करना, कहता उस दिन सानू ना करना पिया हो पैकअप वैकअप करना पिया, तो कहता मैं बाद चो सौ पा ली कि मैं काम नहीं करना यशराज ना। मेरे ख्याल अज तक यशराज बैनर मैनू, अगेन हो सकता है कि मैं गलत हुआ, पर मेरे ख्याल ना करी यशराज बैनर ना वाकई सनी देओल ने बीइंग द सुपरस्टार ही वाज उस वक्त है ना,
1: तो Parni, that was Bajigar also, sorry. And then another one, ek aisi udi naal Madhuri Dikshit naal. माधुरी दीक्षित एंड शाहरुख खान एंड सलमान खान से
0: फिल्म का की नाम से हमेशा एंजाइटी ची रहता शाहरुख खान की
1: माधुरी दीक्षित भी देखो बाद चुकी कर दी है जो तो पैरालाइज हो जाता है रूल मेनू सही लग गया भी चल तेन सवार के चंगी तरह फिर पहाड़ी तेरे जाके फिर धक्का दो
0: बिल्कुल ठीक है, मतलब माधुरी ब्रो व्हाट आर यू डूइंग, बाउंड्रीज होती है दोस्ती के अंदर हद है ना। अच्छा सलमान खान ना एक भी है शायद ये भी चीज होती है कि तुसी जिस उम्र च जिस एक्टर नू जिहड़ी पहली फिल्म वेखी थोड़े अंदर ना इमेज बन जाती हमेशा। सो मैं सलमान खान की ऑब्वियस जी गल कि जो प्रॉपर होश होश आया तो मैं ज्यादा धूम धड़ाम वाली है ना इदा दिल्म देखी, तो बागबान जो देखी ना थिएटर च तो मैं बड़ा झूठा जहा लगे
1: शौक लगे
0: खैर सलमान खान इन्ना अच्छा बच्चा अच्छा बागबान भी क्या गिल्ट ट्रिप है बिना गल का। तुम ये सोचो गाइज सारे सुनो ध्यान अज नोटिस करो बागवान दे अंदर अमिताभ बच्चन अपने सखे चार मुंडिया नू लेटर लिखदा पर अपने सौतेले मुंह बोले बेटे नू आईएसडी कॉल करदा हद है यार कोई पॉइंट है कोई सेंस है
1: इंपॉर्टेंस ब्रो इंपॉर्टेंस
0: इन्नी इन्नी
1: उन्हें पता लग गया ही इज गुड ब्रो
0: होली खेले रघुबीरा क्यों कर रहे हो ब्रो थोड़े को पैसे नहीं है डोंट डू इट पॉटलक कर लो उथे माड़े मोटे पैसे कट्ठे हुए परेश रावल को काम करके उथे चले चले फिर नहीं चली ब्रो चल करो पैसे कट्ठे करो
1: फिर मोटा भाई एक्सप्लेन करनी शुरू हो गया अरे ठीक है मैं अच्छा खासा सेहत का हूँ पर आप मुझे हर बात पे मोटा भाई क्यों बुलाते हैं नहीं हमारे गुजराती में मोटा भाई बड़े भाई को बोलते हैं
0: बिल्कुल ओके परेश रावल वर्गे लोगों ने पैसे लिखे की शिरोल करने पे ओए बड़ी खतरनाक फिल्म है भाई
1: ओदी ओदी जड़ी सी नहीं जिच वो क्रॉस बने हुंदा है पूजा भट्ट दे नाल सी की केड़ी सी फिल्म यार
0: मैं कभी पूजा भट्ट दी कोई फिल्म नहीं देखी शायद एक ओ जड़ी संजय दत्त ना बहुत मशहूर फिल्म है पर मेनू भी वो बहुत वेगली याद है सो मेनू फिल्म नहीं
1: पूजा बट शी हैज अ चार्म एक्टिंग भी ठीक ठाक सीगी पर आई डोंट नो ओदा आई थिंक कहंदे हुंदे ना कि जदो तुसी अंदरों सोर्टेड नहीं हुंदे
0: हां
1: तुसी उस ऊंचाइयां तक नहीं पहुंच सकदे जिदे ते तुसी डिजर्व करदे हुंदे हो
0: हां एह गल तो ठीक है तुहाडी
1: ते इस करके मेरी मम का फेवरेट हुंदा सी जदों एक तां ना रजिंदर कुमार एक रजिंदर नाथ हुंदा सी कॉमेडियन
0: हाँ ओ राज कपूर दा रिश्तेदार ही सी ओ मेरे ख्याल साला सी राज कपूर दा
1: आई डोंट नो व्हाट
0: साला सी या सांडू सी मेरे ख्याल नाल प्रेमनाथ रजिंदर नाथ सेम फैमिली ने यस यस यस यस
1: जेड़ा रजिंदर नाथ सी दैट वाज माय मॉम्स फेवरेट
0: हां
1: कॉमेडियन मम्मी विल वॉच अगर ओदी मूवी आ गई तां शी विल वॉच शी विल वॉच इन सिनेमा
0: अच्छा
1: नेड़े तेड़े नहीं देखनी शी विल वॉच इन सिनेमा
0: अच्छा
1: या
0: नाइस मैनू फ्रॉम 70s सब तो वधिया माय फेवरेट हूँ मैं मैनू याद आ गई ना मैं आज जाके भी देखनी है पक्की गल है मेरी फेवरेट है अरे भोंदू मेरी प्यारी बिंदु मेरी भोली बिंदु मेरी प्रेम की मेरी नेम गदिया बीज बवर में गुड़ गुड़ गोते खाए झटपट पार लगा दे किशोर कुमार वाली
1: झटपट पार लगा दे वो आपे हाथें चप्पूंगो वो
0: सब तो बढ़िया पहले ना ऐसा कहना कहना उसे अनुराधा उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड आने के अनुराधा नहीं बिंदु बिंदु ओरे तेरी की भूला
1: उस

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस शर्ता लागू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: जे तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजुर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
3: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
1: गड्डी तां ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवें?
3: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
2: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। एटीओ ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, एटीओ डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
4: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक, ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपने बिजनेस नू चमकाओ, कॉल 1300-151616, quicksignage.com.au। ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय लई, हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त to 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करन वाले लई है, डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी लई आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD ऑन रोड्स ऑनर्स, कंडीशन अप्लाई।
5: सोना

आप समझ तो गए होंगे कि मैं समझाऊं। हाँ बोलो, मेरा ख्याल समझ गए। हाँ चलो अच्छी बात है हुस्न का फुसूं भी इलाज फिसुर्दगी, रुख से नकाब उठा कि तबीयत उदास है। हुस्न वाले को कहा जा रहा है कि ये इलाज है फसुर्दगी का, बेचारगी का, बीमारी का। बेचारगी बीमारी को नहीं कहते, लेकिन बेचारगी और कई तरह की होती है। हाँ उसका इलाज भी है इसमें।

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।

0: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले हूँ नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990 BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900 एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी BYD ऑन रोड्स ऑनर्स कंडीशन अप्लाई
1: किचन का स्टाइल डल लगता बाथरूम वैनिटी सिंपल जया हुन टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन पाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी असि बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन
2: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au
3: टेंशन मेरी टेंशन
4: की होया
3: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
4: काका जी टेंशन छड्डो फोन चको कॉल करो BY इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
3: या 90-77-97-33
4: या ईमेल info@byimmigration.com.au
3: याद रखो 9077973
4: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
3: हर कदम तुहाडे नाल
5: वाओ तेरी सब्जी दे खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मेनू भी दस दे सीक्रेट
6: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
5: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट goldleafdairy.com
7: सोना चाहिदा
8: भरोसा चाहिदा
7: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493536042

0: बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने, बंसल लॉयर्स। तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आएंगे लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। ज्वेलर्स परोसे दी निशानी। ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले। हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है। डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD On roads, on us. Conditions apply.
2: Kitchen the style dull lagda? Bathroom vanity simple jya? Hun tension khatam karo. Aa gaya ZJ Stone Mason. Tade ghar nu banaye ekdam classy. Assi banaune aa designer stone bench tops for kitchen. Stylish vanity ate modern laundry. Oh vi porcelain ate marble nal. Jithe elegance mildi hai durability nal. Hun na sirf kar par tuhadi personality vi shine karegi stone de style nal. Call karo 0410-045-555 ya aaj hi visit karo 104 Collins Road, Melton।
3: हांजी रेडियो।
1: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनों विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालों तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नू चमकाओ। कॉल 1300-151616 quicksignage.com.au।
0: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
4: टेंशन निरी टेंशन
5: की होया?
4: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
5: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
4: या 90-77-93
5: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
4: याद रखो 9077-9733।
5: VY Immigration and Education Consultant।
4: हर कदम तो आड़े नाल।
6: लादे फेरे।
7: हाँ जी, ओए हाँ जी।
8: हाँ जी रेडियो।
9: अज दा विचार, अज दी कहानी, हर रोज तुसी सुन दे हो शो हाँ जी मेलबर्न विच। तो हाड़ी डिमांड उते आओ एक बार फिर सुन दे हां इस हफ्ते दी एक बेहतरीन कहानी।
10: रेडियो हाँ जी 1674 AM। आस करते हैं दिन तुहाडा वधिया जा रहा होगा। समा हो चुका अज की कहानी का, अज के विचार का। अज की कहानी चीन के नाल रिलेटिड है। कहिंदे ने एक बारी तीन बुद्धे सी उत्थे जिहड़े हसदे रहिंदे हमेशा, जिथे भी किते जांदे, जिथे भी किते बहिंदे हमेशा हसदे रहिंदे, खुल के हसदे। ते इस करके वो लोगों के विच हसण वाले बुद्धे करके जाने जाते। लोगों नूं किन्नियां भी दुख तकलीफां होंदियां जदों भी उन्हां नूं वेख लैंदे, उन्हां दियां सारियां परेशानियां दूर हो जांदियां। जदों भी किसी पिंड दे विच पहुंचदे, लोकी पुज के उन्हां नूं वेखण जांदे, बच्चे, बुढ़े, जवान, औरतां सारे इन्हां नूं वेखण दे लई, मिलण दे लई आउंदे। बहुता बोलदे नहीं, सिर्फ हसदे। कोई अपनी परेशानी कोई दुख तकलीफ जाके इन्हों दसता तो तभी वो खुल के हसते इन्ना हसते कि उस दुखी का अपने आप हासा निकल जाता। इस वजह के करके लोग इन्हों काफ़ी श्रद्धा के नाल पूजना शुरू कर देंगे। दूर दरेडे तक इंतजार रहिंदा होवे ना ते अज ये बुद्धे साडे घर आउण, अज ये बुद्धे साडे पिंड आउण। हर एक नगर दे विच ये उडीक रहिंदी पर मन मर्जी दे मालक जिथे जी करदा उत्थे जांदे, जिथे नहीं जी करदा नहीं जांदे। खूब इंजॉय करदे, लोकां दीआं आपस दे विच गल्लां हुंदीआं कि इन्हां नूं कोई दुख तकलीफ नहीं, इन्हां नूं कदी उदास नहीं वेख्या, इन्हां नूं कदी रोंदे नहीं वेख्या। लोकी जिदा इस चीज़ की ताकत विच सी कि कदी ये भी त्याखर इंसान ने, इन्हां नूं भी कितें दुख तकलीफ दे विच वेखीए। इंसानी दिमाग है ना, अपने नाल उन्हां नूं अलग करके किदां वेख सकते हैं। कहिंदे ने एक दिन एक नगर दे विच पहुंचे, एक पिंड दे विच पहुंचे, तीनों जने जोर जोर ती हस रहे ने, बस हस रहे ने ते हस रहे ने। इदां दा पहला कदी हासा किसी ने नहीं वेख्या इन्हां दा, अज इन्ना क तेज ते इन्ना क लम्मा हस रहे ने जिदा पता नहीं किड्डी क वड्डी खुशी मिल गई होवे। खौरे अज की वेख लिया होवे। हसदे हसदे हसदे हसदे लोगों के हले गल्लां चल ही रही ने कि इन्ना ज़्यादा हसया तो बंदा मर भी सकता, तो इन्ने दे विच पटाक देनी एक तिना दे विचों धरती दे उत्ते डिगा। धरती दे उत्ते डिगदे ही अपने सवास छड्डते, बाकी दे बचे दो बुद्धे उन्हूं वेखदे ने, वेखदे ने कि अपने सवास छड्ड गया, फिर हसना शुरू कर देंदे ने। लोग हैरान ने क्योंकि लोग चाहते जी कि इन्हां दा साथी अज दुनिया छड्ड गया, हसदे हसदे मर गया। इन्हां नूं रोना चाहिदा, इन्हां नूं दुख करना चाहिदा। तरह तरह दीआं गल्लां हो रहीआं ने पर इन्हां नूं कोई परवाह नहीं, इहनूं अपनी गोदी दे विच रख के हस रहे ने, उसे तरह ही जिदा पहला हसते ही। हासा थोड़ा जिहा मध्यम पैण दे उत्ते, बाकी कुछ लोग तां चले गए पर कुछ सियाने लोग पिंड दे अगे आए, जानण दी कोशिश कीती कि तुसीं हस क्यों रहे हो। थोड़ा हौसला करके बुद्धिआं नूं पुछिआ ते उन्हां ने कहा जदों आपां तुहाडे पिंड वल नूं आ रहे सी ना ते इस साथी इस साडे साथी ने साडे नाल शर्त लाई ही। इन्हें कहा ही चलो अज वेखदे आं, हुण बजुर्ग हो चुके आ, दुनिया तो जाण दा समां आ गया, चलो भला अज वेखदे आं। हसदे हसदे किहड़ा पहलां दुनिया नूं छड्ड के जांदा, ते जिहड़ा हसदे हसदे अज पहलां मर गया उह साडे चों जित गया। ते खुशकिस्मती वेखो इहदी, इहो ही जित गया, इन्ना कह के फिर हसण लग पैंदे ने। लोकां नूं समझ नहीं आउंदी कि उह करन ते की करन, की दुख करन इन्हां दे नाल। आखरी क्रिया कर्म दा इंतजाम कीता गया ते बाकी बचे दो बुद्धिआं ने कहा तुहानूं पता है जांदे जांदे सानूं इह वी कह के गया सी कि मेरे क्रिया कर्म दे उत्ते नवें कपड़े मैनूं ना पाए जाण, जिहड़े कपड़िआं दे विच मैं हाँ उन्ना ही कपड़िआं दे विच मैनूं अग लाई जावे। मैं सारी जिंदगी दुख कदी अपने नेड़े नहीं आउण दित्ता, कदी वी कोई तकलीफ मैं अपने उत्ते हावी नहीं होण दित्ती, ते मैं नहीं चाहुंदा कि मेरे मरण तो बाद कुछ नवां तुसीं मेरे शरीर दे उत्ते पा दो। जो मेरे कोल है वह बहुत वधिया। ते कहिंदे ने कि अपने आखिरी किरिया करम का भी सारा ब्यौरा दस के गया, तो इन्ना कह के बुद्धे फिर हसना शुरू कर देने। हसद्या हसद्या इनू लंबू लाते ने, वेंद्या वेंद्या इहदा शरीर अग खा जाती है, पर यह हसना बंद नहीं करते। तो हुण सारे पिंड के लोग जिहड़े आले दुआले इकट्ठे हुए ही कहिंदे ने उन्होंने भी हसना शुरू किया। इन्ना हसते रहे इन्ना हसते रहे जिन्ना चिर तक सिवा ठंडा नहीं पै गया। ये सारे लोग उन्हां बुद्धियां दे नाल बैठे हसते रहे, ते इस तरह दे नाल हसद्या हसद्या एक बुद्धे ने अपनी जीवन लीला खत्म कर दिती, ते बाकी बुद्धे भी इस तरह दे नाल मरना चाहते ने, ते बाकियां नूं इहो संदेश देना चाहते ने। कोई भी दुख तकलीफ होवे, कोई भी वड्डी तो वड्डी मुसीबत होवे उनू हस के सामना करो उहदा, ते जे तुसीं हसदे हो ते उह दुख तकलीफ आपे ही दूर भज जांदी आ कि इहनू ते कोई फर्क ही नहीं पैंदा। ते इहो ही संदेश जांदे जांदे बुद्धां ने दित्ता। बड़े सारे लोग जिन्हां दा रोण नू जी करदा सी, बड़े सारे लोग जिन्हां दा सानू रोंदे होए वेखण नू जी करदा सी कि उहनां दा साथी चला गया, इह किद्दां दे लोग ने, इह रोंदे क्यों नहीं, इन्ना लम्मा साथ सी, इन्ना खुशनुमा साथ सी, ते उह लोग इह सब वेख नहीं सके, उह साडे नाल नाराजगी शो करके जिद्दां परे चले गए ने ना। इस तरह दे नाल दुख तकलीफां ने, जे तुसीं हसदे हो हर एक मुसीबत दे उत्ते, हसदे हो हर एक पल हसदे हो, ते उह दुख तकलीफां इस तरह दे नाल तुहाडे कोल दूर तलियां चलियां जांदियां ने, कदी वी तुहाडे लागे नहीं आउंदियां। सो आओ फिर इस कहानी तो सीखते हैं कि दुख तकलीफा दूर किदां करनियां ने, क्योंकि ये तो सारियां नूं ही ने, ते हर कोई हल लभदा फिरदा कि किदां आपां इन्हां तों दूर भजणा, किदां आपां इन्हां नूं दूर करना, किदां खुश रहना। ते खुश रहण दा ये एक तरीका इन्हां बुद्धियां दे कोलों जेकर कोई सीख सके। आओ फिर कोशिश करदे हां जिन्ना क भी हो सके अपने आप नूं खुश रखिया करिए।

0: शर्ता लागू।
1: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
2: हाँ जी रेडियो।
0: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
3: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वद लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

सॉरी ब्रेक फ्री प्रोग्राम है पर ड्राइव बैक शो दे विच जे गल बनेगी ता ही गाना चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा टाइम थोड़ा पर घेंट जे तो चलाइए घटो घट कुलबीर झिंजर ने पूरी दे पूरी ईपी लिया हैगी है।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: ला ला ला ला ला ला ला। क्या बात है यार, गाना जेड़ा बना तना सिंह साहब, तुसी पास हो यार, वेरी गुड वेरी गुड। रेडियो हाँ जी 1674 एम ते थोड़ा स्वागत है, मैं हाँ कृष्णा, एंड समा हो चुका लाफ्टर थेरेपी दा, अपने चेहरे ते मुस्कान लेके आंदा, बच्चों के वधिया वधिया जोक्स बुचारता, बोलियां नू सुनन दा ते उन्हां नू एप्रीशिएट करन दा, ते मेरे नाल हसन लई हसी ठिठोली लगान लई लाफ्टर दे ब्रांड एम्बेसडर बाय यूनेस्को UN WHO ऑस्ट्रेलियाई सरकार, भारतीय सरकार, पाकिस्तानी सरकार, अफगानिस्तानी सरकार आ गए ने नोनिया जी।
1: थैंक यू वेरी मच कृष्णा जी, थैंक यू सारे जने दा बहुत बहुत शुक्रिया, अदाब सलाम नमस्ते सत श्री अकाल सारे जने नु, उम्मीद करते हैं कि सारे दा फ्राइडे चढ़ चुका होगा और बहुत सोहना चढ़ चुका होगा, और आस करते हैं कि बहुत सोहना गुजरूगा भी, डेफिनेटली गुजरूगा, क्योंकि असी आस्ते अरदास सिर्फ और सिर्फ बेहतर और बेहतर दी कीती है, और जो ही असी मांगदे हां ओही सानू मिलदा हुंदा जिंदगी दे विच। सो अज असी की करना, फ्राइडे इंजॉय करना है, इंजॉय करना मस्ती दे नाल, 100% मस्ती दे नाल, होर कुछ नहीं, जस्ट प्योर मस्ती, जिहड़ी कि असी काम दे विच इन्ने बिजी हुंदे हुंदे थोड़े थोड़े भुलदे जाने। सो वरी नहीं करना, क्योंकि साडे नाल आ चुके ने नोनिया पी दयाल, जो रख दी है सब दे हासिया दा ख्याल।
0: वाह वाह वाह
1: कृष्णा जी, आई टेस्ट यू अगेन।
0: मैं फिर भुल गया यार, मेरी टैगलाइन की है यार। चलो कोई नहीं, आज बना के जाऊंगा, टैगलाइन डन हो गया।
1: ऑलराइटी,
0: पर आपा पहले अपा ना बच्चा ने पूछा है कि टैगलाइन की रखी जा सकती है ना, गुड आइडिया, दैट्स अ गुड आइडिया। पर ऐसा करते हैं, पहला कॉलर लेने तेग नू, फिर तेग तो बाद मन्नत ते फतेह, तुसी रेडी रहो ते आज फिर करते हैं गल्ला बात। हेलो तेग, फोन कर लिया, साडा हाल वधिया हो गया, सही के नहीं, तैयारी स्कूल दी?
2: हां जी
0: अज तक सवेरे फोन बहुत मिस करते मैं तेग रहा, सॉरी तेग, मेरा ना सिस्टम नहीं सेट हो रहा सीगा
1: यार, कृष्णा बीरे नु ना फाइन लाना पैना है,
0: रियली सॉरी,
1: तगड़ा फाइन लावांगे
0: यार, ओले आएगा अगला फाइन वाला बंदा, तुसी हुने ही तैयारी करा दो है।
1: अज की सुनाओगे सोने पुत्तू? फिर
2: आज मैं सुनाऊंगी एक बोली।
1: ओके
0: लियाओ जी लियाओ, फ्राइडे है तो बोली बनती है। फिर शांत होगी बोली?
2: मैं
0: बोली नहीं बोली
2: माता चले आप पर लून कोई नहीं, ये करे बैठे आप पर स्कूल कोई नहीं,
0: अगे
1: हवा भरन ली बलून कोई नहीं,
0: वाह वाह वाह, फोन करन ली फोन कोई नहीं,

0: जीजे ने पानी मंगिया सारी टोटा गिलास खराब।
1: जीजे ने
0: जीजे ने पानी मंगिया।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
2: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी
3: रेडियो

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
2: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
4: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों, टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम, कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2FOLD LENDING।

0: क्रंची
1: हाँ थोड़ी टेक्सचर क्रिस्प है पर हाँ पर मतलब टेस्ट मेनू ओदे लागे छागे ओदी फैमिली दा लगा है
0: then you should eat mine
1: अच्छा
0: it will taste like meat
1: अच्छा चलो ठीक है मीट ही नहीं कभी खाता मैं कितना कह रहा यार ये तो लैंप ही है निरी लैंप बनाई है नूनिया जी वाओ ब्यूटीफुल मैं भी शिकार करता रहा मेरी लाइफ चो बिना गल्लो
0: सो आज सारे जाने प्लीज साढ़े नाल आके शेयर करो
1: यस 044-717-1674 तक कॉल करो
0: क्या बात क्या बात क्या बात डोंट क्या भी आ गया आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन मैंने भी देर लगी सी
1: दूसरे वाला मैं याद नहीं तो तुसी उन्नू भी तुसी सारे भी भूल जाओ ठीक है ये कॉल करो फ्रेश फ्रेश कॉल करो फ्रेश फ्रेश कॉल चकेगा थोड़ा भरा
0: yes.
1: कोई रोले वाली गल ही नहीं है
0: yep.
1: सही कि नहीं
0: यस सो जिंदगी जड़ी है ना जिंदगी नु एंजॉय करो मस्ती करो यू नो एक एक ना एक होर मैं दैट्स अगेन अनदर थिंग आई ऑफन यू नो मंबरिंग कर दिया ना पर मिरर मिरर ऑन द वॉल
1: अच्छा
0: ओदी ओदी रियल वाली भी कविता पता केड़ी है
1: नहीं मैंने तो ओदी वाली पता स्टेप मदर वाली पता ओदी ओ स्नो वाइट पहन दी
0: हां ओही ओही व्हाट डज शी से
1: मेरा हुज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल मेरे ख्याल
0: यस यस यस हुज द प्रीटीएस्ट इन ऑल हुन मेरी वाली जड़ी है
1: हां
0: वो हैगी मिरर मिरर ऑन द वॉल
1: जी जी
0: तर्जुमा कर दो
1: शीशे शीशे
0: कांध वाले शीशे
1: कांध ते टंगे या शीशे
0: आई विल गेट अप Often, I will fall.
1: मैं उठांगी भी, मैं डिगांगी भी.
0: Yes. Okay, थोड़ा change कर देने. I will always get up after I'll fall.
1: I will always get up after fall.
0: Whether I run, walk, or crawl.
1: Whether I run,
0: walk,
1: पावे मैं पज्जा,
0: तुरा,
1: या रिंगा. Okay, okay.
0: I will set my goals. And achieve them all.
1: मैं अपने दृढ़ निश्चय करके गोल्स बनाऊंगा बड़ी भाग मिलका भाग स्टाइल चली गई है बनावांगी ते उन्हें पूरा करांगी
0: yes. so, जिंदगी दे बिच हमेशा असीं डिगदे हां और उठण लई ना सानू हासा चाहिदा हुंदा सानू थोड़ी जिहियां लाइट मैमरीज चाहिदी हुंदियां ने गुड मैमरीज चाहिदी हुंदियां ने और जिहड़ियां गुड मैमरीज बनदियां हुंदियां ने ना बनदियां हुंदियां ने जदों तुसीं लाइट माइंड चुनने हो हासे वाले माइंड चुनने हो खुशी वाले माइंड चुनने हो सो क्यों नहीं असी ऑफ्टन अपने आप नू उस माइंड सेट च लेके आउंदे
1: मैं थोड़ी गल नाल सहमत है पर ना मैं जोन आउट हो गया एक चीज च कि ओ जेडी ओ गल है ओ ता बब्बू मान साहब ने पहली करती हुई है ट्रांसलेट
0: केड़ी
1: मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल है ना उच्चो कहंदे ना कि शीशा मैनू मारे सैन ता जद जुल्फां नू छेड़ा दूध पिलावा लाचियां वाला चलो ओ नहीं आएगा पर शीशा मैनू मारे सैन
0: दैट्स टू बैड कंपैरिजन
1: जाओ यार
0: जाओ जाओ किशे
1: ए थानू ना ए ना थानू 20 साल बाद पता लगनी है आज नहीं पता लगेगा
0: ओके
1: ठीक है
0: okay.
1: पूरे 20 साल का समय okay,
0: कृष्णा जी
1: थानू पक्का पता लगेगा
0: डेफिनेटली
1: धन्नो
0: जरूरी नहीं थानू हर चीज आज समझ आ जाबे
1: हां नहीं नहीं
0: दिस इज नॉट मस्ट थिंग
1: हां
0: बहुत सारी निकिया निकिया गल्ला हुंदिया ने जो सानू बहुत छोटे हुंदे समझ आ जांदी हुण तुसी छोटे हुंदे थानू एक एग्जांपल दवां छोटे हुंदे एक गल कहंदे हुंदे सी ना सारे जाने कहंदे हुंदे सी बड़े ऑफटन कहंदे हुंदे सी के जो जह जा हुंदा ओही जई हुंदा है
1: हां हां ओ मतलब यूजुअली तद हुंदा है कि अग्गो बेइज्जती नहीं समझ आ रही तां बंदा कहंदा चल तू भी सेम हां
0: हां हां नहीं ओदे क्या क्या कि जंदा हुंदा सी जेड़ा जह जा हुंदा ओही जई सोचदा
1: ओही जई सोचदा ठीक बिल्कुल ठीक
0: हुण किन्नी रियलिटी है ए
1: ए फैक्ट है दैट इज राइट
0: तुसी अज की हो
1: हां
0: व्हाट थोड़ी विचारधारा जो भी हैगी है तुसी ओ
1: बिल्कुल ठीक
0: इफ यू आर पॉजिटिव थिंकर You're a positive personality. If you're a negative thinker, you're a negative personality.
1: And बड़ा hyperly है.
0: Yeah.
1: बहुत hyper level ते होने है चीज दिसदी हर किसी दे अंदर है ना शायद social media से साडे postcard बन गए ना पक्के सी छाप के रखे हुए है साडी personality दे. So ओ सानू reflect करदा असी ओनू वेख के होर reflect हुन्ने है.
0: Yes.
1: So जैसा तुसी कहना कि the more positive you think, उन्ना ही तुसी positive हो जाओ ना जिन्ना छेती बंदा अपने आप नू negative करे ना एक ता negativity दी भी क्या खूबसूरती है ना क्या magnetism है.
0: Yeah. It's attract.
1: ते ओही वाली जैसा कल मेरे ख्याल नाल जेड़ा नेगेटिव थॉट है ना ओदा लेवल मेरे हिसाब नाल जो कल मन साहब ने सानू कॉल की ही कि उना दी नौवीं क्लास दी क्रश सीगी
0: नौवीं क्लास दी क्रश
1: वो कहंदे सारी क्लास दी क्रश सीगी है ना ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਐ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚੋ ਓਨਾ ਹੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ

0: वेरी गुड, करो जी इंजॉय, वेरी नाइस। ते अमृत भैन जी भेजते ने, जिंदगी पूछती है और कुछ चाहिए, मैं कहता हूँ जो था वही लौटा दे। वाह वाह वाह, क्या बात है, वेरी गुड। चिब काटते तुसी दा शायरी वाले जी। ते जसप्रीत जी कहते ने, सत श्री अकाल नोनिया जी एंड कृष्णा वीरे, तुसी बहुत टैलेंट हो। थैंक यू। आज दा शो गाइस खत्म है, मैं चलदा।
1: मैं रॉकस्टार बन गया।
0: ये
1: मैं खड़ा तो ना पड़ा।
0: ते सुखविंदर भैन जी भेजते हैं कि कृष्णा वीरे सॉरी फील नहीं करना गलती ते, क्योंकि तुहाडे नाल नोनिया जी ने ऐसा हो सकता है। नोनिया जी की शायरी सुधरगी, तुहाडी बिगड़गी नहीं। नहीं, मैं अज बहुत सोनी शायरी तैयार करके आया, तुहानू सुनाऊंगा। अगर कहते ने कि फ्राइडे ना बादाम का पूरा एक डब्बा खा के आया करो। नोनिया जी का जोक तो बुजारता हैंडल नहीं करना, तुसी मेरा कोलेस्ट्रॉल ते बजट दोनों बधाओ। थैंक यू भैने, थैंक यू सो मच। ए तो नहीं मैंने उम्मीद सी थोड़े को। नो नो नो नो नो,
1: डोंट वरी डोंट वरी, खाने वाले बनो, मैं ले आके दूंगी।
0: तो जस्ट
1: अमर, मैं बस मैंने इतना इन्नी की लेवी दियो मैं तेरा दिमाग खा सका।
0: ते अपना जस अमरजीत सिंह जी कहंदे ने, गुड मॉर्निंग, मैंने बड़ा डर लगता क्योंकि ना हमेशा ना गाना बड़ा खतरनाक कहते हैं। अच कहते गुड शो, ला दो कोई सॉन्ग अच दारा सिंह जी की आवाज च, वो यार ये किदा होएगा। रियली सॉरी।
1: मैंने कहा ना तुम नहीं उठा सकता, तो नहीं उठा सकता।
0: दारा सिंह जी का सब तो बेस्ट सिगा जो उन्होंने हनुमान प्ले किया ना।
1: ओ यस,
0: है ना, सीता माता सत श्री अकाल। वेरी नाइस।
1: ही नेवर, कितनी सारी उन्होंने फिल्मों च काम किया, मतलब मेन लीड वालियां च भी जिहड़ियां
0: छोटी जी ब्रेक। किशोर कुमार जी सुनील दत्त नूं की समझा रहे, माड़ा समझो यार।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। आओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
2: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हॉर्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
3: किथे वज गई तेरी गड्डी?
4: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
3: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है
5: सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने।
3: इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
6: Show.

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 डॉनस्टेल स्ट्रीट डैंडीनोंग।
1: जिथे इमीग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077973।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तुहाडे नाल।
0: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक भरोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ, आओ थोड़ा कोई हल करिए।
3: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390-866-655 और विजिट tireforce.com.au।
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
3: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनीना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दाला, ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनीना विच।

0: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मैनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने हां डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton.
3: It's just another sad love song, Beiji, Beiji, Beiji, Beiji.

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: अच्छा अच्छा
3: लो भी दोस्तों गल पेश कर लगे हैं।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: हाँ जी

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनेना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
1: हाँ जी हाँ जी, ओए

पेपर आना पर पेपर च कख ना आना, सारी सारी रात बह के पर्चियां बनाना, एग्जामिनर नाल कोई जाके जुगाड़ जा लाउना, फिर घर दी कड्डी फलाउना।

0: ASL, baby.
1: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
2: की हुआ
1: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
2: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
1: याद रखो 90779733
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
1: हर कदम तुहाडे नाल।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
0: याद रखो 9077-9733।
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी।

ब्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आएंगे लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। ज्वेलर्स परोसे दी निशानी।

0: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सच्यार थाप्या न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नान गाविए गुनी निधान गाविए सुनिए मन रखिए पाओ दुख पर हासो कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार बती माई जे हों जाना आखा नाई कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जित सुपावा बिन पाने के नाए करी जेती सृष्ट उफाई वेखा बिन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवाख नाम विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाव रहाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर न आवे ता वात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्त रै नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे ते हा कोई न सुजे जे तिस गुण कोई करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै तर तवल आकाश सुनै दीप लोप पाताल सुनै पो न सके काल नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै ईसर बर्मा इंद सुनै मुख सलाहन मंद सुनै जोग जुगत तन भेद सुनै शास्त्र सिमरत वेद नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सत संतोख ज्ञान सुनै अठ सठ का

वक्त न पाया का दिया जे लिखन ले कुरान हितवार ना जोगी जान रुत महा ना कोई जा करता सिर ठीक को साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आख है एक दू एक सियाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक जे को आपो जाने अगे गया न सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए तां लिखी है लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अत्ते वाह पवे समुंद न जानिए समुंद सा सुल्तान गिरिया सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरै अंत न सिफती कहन न अंत अंत न करने दे न अंत अंत न वे

पाए जाए। ए अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टुटे वेकार, केते लैले मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार, ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाए आखन पाए, ओ जाने।

अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश पूत ज्ञान दया पंडारन कट कट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा साद संजोग वंजोग दोय कार चलावे लेखे आवे पाग आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे

अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान बाने नमो मान माने नमो चंद चंद्रे नमो पान बाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ति प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र पाने नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोक माता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण कुकुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणासी अनूपे अरूपे सुमस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिर्द करदा अधो उर्द अर्दंग अगोग हरता परंग परम परमेश्वरंग प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारंग अछेती अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्त तामंग तेरा जोर चातुरी छंद जलय हैं थलय हैं अभीत हैं अभय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अवेश हैं प्रियंग प्रछंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ती निदाने नमस्त्वं निनाथे नमस्त्वं परमाते नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अभंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे त्रभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचांद तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुनकाल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अरना पेश जाकर रूप रेख नराग जात्र तात्र दिशा विशा हुए फैलो नराग नाम काम भेहीन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेद हरकतेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जनम मर्म ही चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरती लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्त्यो सुजंबव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अभूत अलख अभेद अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकुदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आव ही वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास।

कालान कान अनुभूत अंग अभावंगत मित पार गुण गण उदार मुन गण बदनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष आदिष्टे तरम सर्वां वर्णांडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे व्यंग प्रिया छंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चातरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभे जुभेश के आ

के अशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रं बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैब गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज रहीम है के कर्म करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दानी है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापी है के सर्वत्र थापी है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीम है के अकाल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम है सलीख मुदाम है गनी बुल शिकस्ते गरीब उल पुलस्ते बुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीम है रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे शुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम प्रनाश है पृथुल प्रवास है निरकत प्रवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत प्रवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपण चंतो प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तौ प्रसाद नमो नरकनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तौ प्रसाद के जाहिर जहूर है के हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसन चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सकन है हिरासल फकन है कलंकम प्रनास है सुमस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है सुमस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकम प्रनास है बिस्तल निवास है के सर्वल गवन है के हमेशल रवन है तमाम तमीज है समस्त अधीश है परंग परंग ईस है समस्त अधीश है अदेशल अलेख है अभेशल अभेक है जमीन जुमा है अमी कुमा है करीमल कुमाल है के जुर जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मित्तो सुबास है के अजब स्वरूप है।

गुणगण मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगण प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आदि कथनी अनाद खल।

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मन संतो प्रसाद करनाले अर काले है कल खंडर है मैं मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करनाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करनाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करनाकृत है अकृताकृता है तरनीतृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्मनायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है प्रजांग प्रया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनाश अकाश अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तर प्रनासे अगंजन अनामे समस्तल निवासे निर्कामंग बभूते समस्तंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा समस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा

0: बोलिए सात समुन्द्रन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सु बैठ कै ऐसे ऐसे बैस बतायो साच को सुन लियो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहुं ले पायन पूतरियो सिर कहुं ले लिंग ले ढलकायो कहुं लिखियो हर अवाची दिशा में कहुं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुठ सबै तुम कावो आप हाथ दै मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा निज कर दै करिया सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिया चुन चुन सत्र हमारे मारिया आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रक्षा राख लो मोय राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत टीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ देते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरत निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जा को पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड किछ भेद न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चिंत नहीं पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तोय तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कहब सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कई पूपा अंडज जे राज से तजकिनी उत्पुज खान बहु रज दीनी कहो फूर राजा हर बैठा कहो सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए चंभव आज जुगा स्वरूप सुजंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रन काता जे आज तो तब सरनी परे तिन के दुष्ट दुख है मरे पुरख जवन पाग परे तिहारे तिन के तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार तिहाय है ताके काल निकट नहीं आए है रक्षा होए ता सब काला दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो।

0: अंतर आत्मा समाले आप छड सदा रह परने गुरबिन अवर न जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए
1: जे को गुरु तेवे मुख होवे बिन सतगुरु मुक्त ना।

0: गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा, ए हो आसमाओ। सब सेती मन मिलिया, सच्चा लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है, हीरा जित जड़ाओ।
1: शिव सकत आप उपाय कै, करता पे हुकुमरताए। हुकुमरताए आप वेख है, गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवे मुक्त, शब्द मन वसाए।

तहि गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंधन हर

माया अगन सावी को जई करता खेल चाया जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया कह नानक

मुखवाक भाई साहिब जी ने आप संगत में सरवण करवाया है। ए पावन मुखवाक दी कथा विचार आपा सांझी करनी है। आप जिन्हें गुरमुख प्यारे बैठे हो, धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दी बख्शिश कीती हुई फतेह दी सांझ पाईए। आओ हिरदे दे विच्चों भिज के बुलाओ फतेह, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा जो पावन मुखवाक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र अंग 660 अंग उत्तर सुभायमान है। अज दा ए पावन मुखवाक साहिब श्री गुरु नानक देव साहिब जी दी रसना तो उचारण होया ए पावन पवित्र शब्द है। धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 31 रागां दे विच्चों तनासरी राग दे विच ए शब्द धन गुरु नानक देव साहिब जी ने गायन कीता है। साध संगत जी, ए शब्द धन गुरु नानक देव साहिब जी ने जग्यासु भावना नूं बिरती नूं मुख रख के गाणा कीता है। आप सियाने गुरमुख प्यारे बैठे हो, एक शब्द है जग्यासु। जग्यासु ओ जिहड़ा जग्यासा अपने मन दे विच रखदा है, जिहड़ा अपने अंदर एक तड़फ ते वेदना लैके चलदा है कि मैं उस करते पुरख दे नाल मिलाप करना है, मैं उस करते पुरख नालों टुटा होया हां, और टुटे होने करके जिन्हें भी दुनिया के दुख ने समाज के दुख ने वह सारे दे सारे मैनू व्याप रहे ने। जिन्हें गुरु नानक देव साहब कहते ने खसम विसार किए रस भोग, तां तन उठ खलोए रोग। रब भुल गया, रब भुला ते भोग विलास करने शुरू कर दिते। जदों भोग विलास करने शुरू कर दिते ते तन नूं रोग लग गए। पर इस शब्द दे विच गुरु साहिब जी ने यह जिक्र किया है। मैं थोड़ा जा पहला भूमिका दे रूप दे विच तुहाडे सामने रख रहा हां कि धन गुरु नानक देव महाराज जग्यासु बिरती दे विच इस शब्द नूं गायन करदे ने। भाव जिहदा मन जाग गया है, जिहड़ा मन करके सुत्ता नहीं, चेते रखियो, बहुतांत दुनिया मन करके सुती रहिंदी है, पर इत्थे उस अवस्था दे विच्चों शब्द गायन हो रहा है। इन्हूं गुरमुख प्यारा ओ हिरदे दे विच्चों भिज के पढ़दा है, जिहदा मन जाग गया है, जिहदा मन जाग गया है उन्हें यह समझ लिया। हुण मन किहदा जाग गया, भाव जिन्हूं समझ आ गई कि यह जन्म मरण का गेड़ जिहड़ा है यह दुखां दी खेड है। जिन्नी देर जन्म मरण का गेड़ चलेगा उन्नी देर यह दुख ते सुख चलते रहने ने, दुख कदे खत्म नहीं होने। हालांकि जदों असी बाणी दी तुक पढ़दे हां, जम जम मरै मरै फिर जमना, जम जम के मरना मर मर के जमना। आपां ते कह दिंदे हां ना जन्म होया चलो खुशियां मनाने। वैसे गुरु साहिब दी जिहड़ी तुक है, जम जम मरै मरै फिर जमना, जम जम के मरदा है, मर मर जम जम के मरदा है ते मर मर के फिर जमदा है। गुरु साहिब कहिंदे बहुत सजाए पया देश लम्मै, बड़ियां लम्मियां सजावां दीआं वाटां दे उपर पै गया, जिहड़ी सजा कदे खत्म नहीं हुंदी। एक जग्यासु बिरती दे विच्चों भावना दे विच्चों शब्द जिहड़ा है धन गुरु नानक देव साहिब जी ने उचारण कीता है। आओ इस शब्द दे विच गुरु साहिब की बख्शिश करदे ने, आपां सरवण

0: साहिब कहिंदे सरबम ओ काल पुरख वाहिगुरु जिहड़ा हमेशा रहण वाला हर थां व्यापक है ओ सच्चा है। ते नाल गुरु साहिब इक जिक्र करदे ने सच्चे पातशाह मैं सिर्फ कल्ला तेरा आसरा तकदा। हुण इन्हां तुकां वल ध्यान दईए, आपां इत्थे भी बैठे आ, गुरुद्वारे अरदास भी कराउने आ, पर गुरुद्वारे अरदास कराउण तों बाद भी साडा कई बार विश्वास थिड़क जांदा, असीं इह दर छड्ड के सज्जे खब्बे भी चले जांदे। पर मेरा गुरु कहिंदा सच्चे पातशाह मैं तेरा सिख पक्का, मैं सिर्फ ते सिर्फ तेनू तकदा, तेरे तों इलावा मैनू कोई दूजी थां नजर नहीं आउंदी। सरबम साचा एक है। मैं बहुता इस पासे विस्थार नहीं करना, पता है ना दुनिया का माहौल किदां दा है। सारे द्वारे कई ते गुरमुख प्यारे इदां दे मिल गए, कहिंदे सारे ही खुश कर लेने चाहिए ने, सारे थावां ते सज्जे खब्बे दौड़ना है। पर इत्थे गुरु साहिब कहिंदे सिर्फ एक ही घर है, वह सिर्फ अकाल पुरख का है। इस दर नूं छड्ड के मैं होर किते नहीं जांदा। ते अपने अपने अंदर झात मार के वेखी असीं किन्ने क दरां ते पड़कदे आं, असीं किन्ने क घरां दे जाके दरवाजे खड़काउने आं, असीं कित्थे कित्थे जाके तरले मारदे आं, किसी मनुख की टेक, किसी कबर की टेक आप बना के बह जाने, कोई बेरिया धागे बधी जाता, कोई तरीत बना बना के डौलिया पाई जाता, किनिया टेक बंदा धार के बैठा। गुरु साहब कहिंदे सिर्फ इत्थे इक्को ही टेक, सच्चे पातशाह सरबम साचा एक है, दूजा नहीं कोई, तेरे तो इलावा मैनू दूजा कोई सुझदा नहीं।
1: की सेवा सो करे जाको नदर करे,
0: ताकी प्रणाव शब्द है। ताकी का अर्थ है तिस दी जदों कोई सेवा करदा है जां सेवा कौन करदा है, ताकी सेवा सो करे, सो दा अर्थ है ओ, ऐ काल पुरख वाहिगुरु जी ओ तिस दी तुहाडी सेवा ओ गुरमुख प्यारा करदा है, जा कौ नदर करे जिस उत्ते तुहाडी बख्शिश हुंदी है।
1: खुद बाज प्यारे केव रहा,
0: गुरु साहिब फिर जिक्र करदे ने, वेखो किड्डी बिरबलता, तुद बाज प्यारे केव रहा, जग्यासु बिरती है ना, ज्यों बिन अमले अमली मरजई है। आ समाज की हालत वेखदे आपां, जिवें अमली बंदे नूं अमल ना मिले ते सवेर तो लैके शामा तक तड़फदा, वह चीखदा, वह रोंदा मैनू अमल दे दो, क्योंकि उहदी जिंदगी अमल हो गई, नशा बन गई उहदी जिंदगी। पर चेते रखियो जिहड़ा जग्यासु है, रंगी हुई रूह है, उहदा नशा एक अकाल पुरख वाहिगुरु हो जांदा है, उहदा नाम हो जांदा है। जे उह किते उहदा छुट जावे, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। एक बाणी का शब्द असीं पढ़दे हां, ज्यों बिन अमले अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती। गुरु साहिब कहिंदे सच्चे पातशाह जिवें अमली बंदा अमल तो बिना नहीं रह सकदा, दस मैं ते तेरे विच रंगिया गया, मैं ते तेरे नाल जुड़ गया, मेरी ते खुराक ही तेरा नाम बन गई है, हुण दस तेरे तो बिना मैं किवें रह।

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। सभी को नंद उत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। नंद उत्सव? आप में से कुछ लोगों को ये उत्सव के बारे में शायद पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। कल हमने मनाई थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, यानी भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन, जब वे इस धरती पर प्रकट हुए। गोकुल में माता यशोदा और नंद महाराज जी के घर जन्मे लल्ला, जिनके जन्म की सूचना जंगल की आग की तरह पूरे ब्रज के साथ साथ ब्रह्मांड में फैल गई। देवी देवता, ब्राह्मण, ऋषि मुनि, मनुष्य, बाल गोपाल, गोपियां, सब भगवान के दर्शन प्राप्त करना चाहते थे। नंद महाराज जी ने अगले दिन एक बड़ा उत्सव का आयोजन किया, जिसे नंद उत्सव के नाम से जाना जाता है। क्या होता है इस उत्सव में, आज जानेंगे हम पुण्य दर्शन में, बस इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए
1: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 0390866655 और विजिट टायरफोर्स.com.au
2: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।

पुण्य दर्शन में आप हैं अपने दास के साथ। जरा सोचिए, सुबह होते ही गोकुल का दृश्य कैसा रहा होगा। जिस घर में रात तक शांति थी, वहां अचानक चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म का समाचार पूरे गोकुल में फैल गया और फिर शुरू हुआ नंद उत्सव। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 5वें अध्याय में इस उत्सव का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। कभी मौका मिले तो अवश्य पढ़िएगा, नहीं तो आपका दास तो आपकी सेवा में उसे उपस्थित करेगा ही। तो नंद बाबा इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने बालक के लिए वैदिक रीति से मंगल संस्कार करवाए, ब्राह्मणों को बुलाया, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करवाया और उनके बालक के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। चारों ओर मंगल गीत गाए गए, वाद्य यंत्र बज रहे थे और गोकुल की गलियां उत्सव से भर गई थी। गोप गोपियां सज धज कर नंद बाबा के घर पहुंच रहे थे। हर कोई नंद बाबा और यशोदा मैया को बधाई दे रहा था और सभी के चेहरों पर अपार प्रसन्नता थी। ब्रजवासियों ने अपनी खुशी इस तरह मनाई कि वो एक दूसरे पर दूध, दही, मक्खन और छाछ उछालने लगे, मानो इन सब की होली खेल रहे हों। सोचिए, जिस गोकुल की पहचान ही दूध, दही और मक्खन से थी, वहां जब आनंद की बाढ़ आई होगी तो पूरा वातावरण कितना आनंदमय हो गया होगा। अब गोकुल के राजा के घर भगवान पुत्र के रूप में प्रकट हुए हों तो पिता भला कितना प्रसन्न होगा। नंद महाराज जी ने अपने महल में आने वाले हर एक व्यक्ति को, साधु को, ब्राह्मण को, संतों को क्या क्या उपहार दिए सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। बताता हूं थोड़ी देर में, मैं यूं गया यूं आया।

आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। नंद उत्सव मना रहे हैं हम सब पुण्य दर्शन में। तो श्रीमद् भागवतम में बताया है कि नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बहुत बड़ी मात्रा में गायें, वस्त्र, आभूषण और अन्न दान किए। नंद महाराज ने जो गायें ब्राह्मणों को दान दी, उनके खुरों और सींगों को सोने के गहनों से सजाया गया, उन पर रेशमी चादर भी पहनाई गई थी। इतना ही नहीं, इसके साथ ही शुद्ध देसी घी, माखन, मिठाइयां, सब कुछ दान दिया गया, क्योंकि वैदिक संस्कृति में खुशी केवल अपने तक सीमित रखने की वस्तु नहीं है, बल्कि अपनी प्रसन्नता को दूसरों के साथ बांटना भी उत्सव का हिस्सा माना गया है। नंद बाबा के हृदय में तो आनंद का सागर उमड़ रहा था, क्योंकि उनके घर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। ये भगवान की ही कृपा थी कि आते ही गोकुल में चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद घोल दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहां एक बहुत सुंदर बात समझने की है, नंद बाबा के लिए कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, उनके लिए कृष्ण उनके पुत्र थे। यशोदा मैया के लिए गोद में लल्ला, गोपियों के लिए नंद लाल थे, और पूरे ब्रज के लिए जीवन का आनंद देने वाले कृष्ण थे। यही तो कृष्ण की विशेषता है, वे भगवान होते हुए भी अपने भक्तों के साथ ऐसा प्रेम पूर्ण संबंध बनाते हैं कि भक्त उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर प्रेम कर सके। इसीलिए कृष्ण का जन्म उत्सव केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, किसी एक संस्कृति का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं। उनके लिए देश विदेश कोई जगह बटी नहीं है, बल्कि उस दिव्य आनंद को याद कीजिए जब ये पर्व हमारे सामने आते हैं, जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। जब जीवन में कृष्ण का नाम आता है तो केवल उत्सव नहीं आता, बल्कि हृदय में भी आनंद का संचार होता है। इसी प्रेम और आनंद के साथ आज भी हम कहते हैं, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, बलराम जी की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और नंद महोत्सव की जय। मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

ब्रोकर्स। अपनी इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू। सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
2: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन, ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596, गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
3: स्मिथ्स लेन बाय मोवैक विच अपने भविष्य की शुरुआत करो, हुणे कदम चुको अते स्मिथ्स लेन दे चुने हुए लॉट्स ते सीमित समय ले मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स ते हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करन ते हिस्सा ले रहे बिल्डर्स वालों वादू $15,000 डिस्काउंट मिल सकता है। ये ऑफर 15 सितंबर 2026 नु खत्म है, अजे ही मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे। होर जानकारी लई आज ही smithslane.mirvac.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नु खत्म है।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: Smith Lane by Movekvich, अपने भविख की शुरुआत करो, हुणे कदम चुको अते Smith Lane दे चुने हुए लॉट्स ते सीमित समय ले मिलन वाले $30,000 तक दी लैंड रिबेट दा फायदा लवो। चुनवे योग लॉट्स ते हाउस एंड लैंड पैकेज बुक करन ते हिस्सा ले रहे बिल्डर्स वालों वाधू $15,000 डिस्काउंट मिल सकता है। ए ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है, अजे हे मौके ज्यादा देर नहीं रहंदे। होर जानकारी लई अज ही smithlane.mirvek.com ते जाओ। नियम शर्तां अते योग्यता दे मापदंड लागू हन। ऑफर 15 सितंबर 2026 नू खत्म है।
2: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
3: हुन टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
2: फिर लवाइए किथों?
3: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
2: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
4: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए

0: ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स परोसे दी निशानी।
1: किचन का स्टाइल डर लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनू बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
2: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले। हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990, ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त to 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करन वाले ले है। डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD ऑन रोड्स ऑन अस, कंडीशन अप्लाई।